0: कबहु भिखारी नीच का साजा,
1: कबहु अब कीर्त में आवे,
0: कबहु पला पला कहावे,
1: जो प्रभु राखे तिही रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कबहु पंडित करे व्याख्यान,
0: कबहु मौन तारी लावे त्यान,
1: कबहु तट तीर्थ स्नान,
0: कबहु सिद्ध साधक मोख ज्ञान,
1: कबहु कीट हस्त पतंग हुए जिया,
0: अनक जौन परमे परमिया,
1: नाना रूप जो स्वागी दिखावे,
0: जो प्रभु पावे तिवें नचावे,
1: ज्योतिष पावे सोई हुए,
0: नानक दूजा अवर ना कोए,
1: कबहु

0: कीमत कह न जाए।
1: सत सत सत प्रभ स्वामी
0: गुर प्रसाद किने बखिया ने
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदे किने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कड़ कड़ सुनी सर्व।

0: संतान प्रस होए।
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संत संग निंदक भी तरे।
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन काग ज्यों लवे।
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए।
1: संतन के दुखन दिशना में जले,
0: संत के दुखन सब को छले।
1: संत के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नीच नीचाए।
1: संत दुखी का थाव को ना है,
0: नानक संत पावे ता ओ भी गत पाए।
1: संत का निंदक महतताई,
0: संत का निंदक खिंटिका न पाए।
1: संत का निंदक महत्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर।

0: साध संग बिन सह सब संग
1: चरण चलो मार्ग गो बिंद
0: बेटे पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म सरवण हर कथा
0: हर दरगे नानक उज्जल मथा
1: कृपा गीते जन जग माहे
0: सदा सदा।

0: मन लाए
1: मन बंशन ना अन्नक फल पाए
0: संग न चालस तेरे तना
1: तू क्या लपटावे मूरख मना
0: सुत मीत कुटम वर बनता
1: इनते कौतम कवन सनाथा
0: राज रंग माया विसार
1: इनते कहो कवन छुटकार
0: हस्ती रथ सवारी
1: झूठा डाफ चोट पासारी
0: जिंदी ए तुझ बुझे नाम बिगाना
1: नाम विसार नानक।

0: जब अकारे कृष्णान दृष्टेता
1: आपन तब कहते होता
0: जब तारी आपन सुन समाद
1: तब बैर बिरौ के संग कमात
0: जब इसका वर्ण चेन ना जापत
1: तब हरक सो को किसे व्यापत
0: अपने आप पार ब्रह्म
1: तब मो कहां किस होवत परम।

पाई। संबद सतरह सह पणि जय अर्ध सस फुण तीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रव बारह तीरथ तद्रव ग्रंथ सुधारा।

पई। जो यह कथा सुने हर गावे, दुख पाप तेह निकट न आवे, विष्णु भक्त की ये फल होई, आद बे आद शिवै सकै न कोई।

सो इतनी सेवा प्रवान करनी। आओ हम प्यार सकार सहित अमृतमय बाणी दी विचार सरवण करिए। सत्कार योग ज्ञानी अगत सिंह जी उन्होंने पासों प्यार सत्कार सहित सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, सतगुरां दी अपार अपार बख्शी सदका आपां सारे

गै मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे।

वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार जो शरदा कर सेम दे गुरु पार उतारन हार। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

चलाएं। जय मुस्कुल हो वे अट पारी हर को नाम खिनमाय उदारी अनुपुन चन करत नहीं तारा हर को नाम कोड़ पाप पर हराय। गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाव सुख कनेरे सकल सुख राजा दुखियार का नाम जप तो सुखिया।

हर नाम निदान हर हर हरजन कैर नाम निदान पार ब्रह्म जन के नो दान मन तन रंग रत रंगे कै नान जन कै व्रत बबे कै हर का नाम जन को मुगत जुगत हर का नाम जन को तृप्त भुगत

वाणी ओत पो जनहर रस रात सुन सुमाद नाम रस माते आठ पैर जनहर हर जपाय हर का भगत प्रगट नहीं छपाय हर की भगत मुक्त बो करे नान जन संकेत तर पर जाते हो हर को नाम काम ते न हर हर गुण गाम

मन कामना तीरथ दया छुटाए करो को मानना मनते उठाए सोच करा दिन सर रात मन के मैल न तनते जात इस दई को बो

नाम जपो जे सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जा हर को जासु सुन रसन बखाने सगल तां ते उत्तम थान नानक जे कट वसै हर नाम श्लोक।

कस्याद प्रसातर प्रसुख बसाय सुत प्रात मीत बनता संग हसाय जय प्रतापी में शीतल जला सुखदाई पवन पाव कामला जय प्रताप गय सब रसा सकल सामग्री संग साथ बसा।

जय प्रसाद क्षति अमृत खाहै तिष्ठा कर को राख मन माहै जय प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमर परम गत पावै जय प्रसाद वसा सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख वसना आठ बैर सिमरत सरसना।

साधका संघ सुनो हर नाओ सा संघ के गुण गाओ साग संघ न मंत विसराय सा संसार पर निस्तराय साधका संघ लगे प्र

दुष्का संग मंत्रिन स सगला परम कर पूजय सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मल खोवे तुभ भगवती की मत्युत्तम हो वाय।

रचना कई कोड़ छेद जति जोगी कई कोड़ राधे रस भोगी कई कोड़ पंखे त्रप पाए कई कोड़ पाथर वृख निबजाए कई कोड़ पौन पाणी बैसुंदर कई कोड़ देश भूमंडल कई कोड़ शशियर सूर्ण खत्र कई कोड़ देव दान मंदिर सिर छतर सकल समग्री अपने सुतारे नान जिस पावे तिस निस्तारे कई कोड़ राजतामसाते कई कोड़ बेद पुराण सिमरतर शास्त्र कई

कृपया देख बढ़ाई। इस काबल ना इंसार कर हम सर्व को नाथ आज्ञा करे बपुर दियो ज्योत पावे सोई फुंतियो कबू उच नीच में बस कबू सो घर को रंग हसाए।

मानतन मुख बोले अरमुख सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पहचान तुझकी सो जी जाने नाम संग जिसका मन माने नाम त्रेन्द्र रंजन जाने गुरु प्रसाद अपन आप सुझ जाए तुझकी जानो तृष्णा बुझ जाए साध संग हर कहत सर्व रोग से अर्जन रहत अंधन कीर्तन केवल व्याख्यान के।

हर ब्रह्म त्यावे सो संत सोहेला ने डोलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवे को किसते डराए जैसा सत्य सदस्य अपने कार्य में आप समय सो दसो दसो दसी दिया गुरु प्रसाद था सब जय जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सो या सुथूल नहीं किसे जन्म न किस मरे आपने चलता आप ही करे आपन जाम दृष्टान दृष्टा क्या करी तारी सब सृष्टि आपे आप सकल में आपन को जुगत रहे थाप थाप अविनाशी नाय किस कंतारण तारे ब्रह्मंडल लख बेपुर पर ताप आप जपाय धना जाप जिन

उनकी सेवा सोई लागे जो सुनो कृपा करे बड़पा के नाम जो पावे विश्राम नानितन पुरुषोत्तम कर मान जुगत करा सो प्रभ के रंग सदा सदा बस हर संग सह सवाय हो वह सोए करने यार पछाड़ना है सोए प्रभ के गजन मिट लगाना जय सत सत दिष्टान नाम जिससे जत समाय समाय

सर्वास्पदे टूटिकार नार गोपाल सर्वजिया पे व्रतपाल सगल की चिंता जब शर्मा है तिस्ते वृथा कोई ना रे मन मेरे सुधार दाप अपना शिव प्रव्यापे आप आपन क्या कचना हो जिस

जाने अपनी में तो गाते हो जिसके सिर तो करने यार वरना बोझ करत विचार करते कि मित न जाने किया नान जो तुज पावे सो भरतिया बेसमन बेसम बैसमाजन बुझे सा प्रभु के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लय दाते दुख नारदा के संगत रहे संसार है।

सतगुरु सिख करै प्रतपाल सेवक गुरु सदा दयाल सिख गुरु दुरमत मल हेरा गुरु बचनी हर नाम उचराय सतगुरु सिख बंधन काटे गुरु का सिख विकार ते आटे सतगुरु सिखो नाम तंदे गुरु का सिख बड़भागी सतगुरु सिख कल पर सुवारे नानी सतगुरु सिखो जी नाल समारै

विघ्न न पाई अनक भगत बंधन निधकाराचरण कम हृदय सिमराय सत बलिहारी सतगुरु अपने नान जस प्रसाद सब रोज अपने औरत पावे जन कोय अमृत पीवे।

भगवत परमा आपन के लावर्ति दान करने आना दूजा जब प्रभु केवल तनी तब बंद मुकत को किसको गनी।

छोटे कौन बंधन बाधे अपना पापी अचरदा नानक पापियो परदा जय निर्मल पुरुख पुरुख पात होता तब मैल कहो क्या तोता।

नाम संग रचन जिन जाता जिसकी है रात सतवचन साधु सब कहत जो जो होए सोए सुख माने करण कराम हर प्रभु जाने अंत

गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबले आकाश सुनया दीप लोअ पाताल सुनया पोहे न सकै काल नानक भगत।

मने मन कोई मने मार्ग ठाग न पाए मने पास्य प्रगट जाए मने माग न चाले पंथ मने धर्म सिद्धि संबंध ऐसा

ओंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बान अखरा सिर संजोग बखाण

तन देह, पानी धोते उतर सुखे, मूत पलीति ही कपड़ होए, दे साबुन लइए ओह धोए तो।

साहु अमोल गुण अमोल व्यापार अमोल व्यापारी है अमोल भंडार अमोल आव है अमोल लै जाहे अमोल पाए मुला समाए अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल तुल अमोल प्रवान अमोल बख्शीस अमोल निशान अमोल कर्म अमोल फरमान

महिम है, के सर्वं कलिह है, के सर्वं दलिह है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र धान्य है, के सर्वत्र गावन है, के सर्वत्र पाहुन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है,

पृथ्वी और प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, विभुक्त स्वरूप है, परजुगते अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है।

0: पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़ी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेती आरजा पड़ी है जेते सास नानक लेख एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ भविया

सोचन कटी है किताब अपना पे लिखा संडी है जा रेणा राय जत काज गर्भ हंडी है मंदा किसान।

मनसा तृष्णा इन्हां नूं खत्म करन दी समर्था रखदा है गुरु दा शब्द। ते सतगुरु जी कहिंदे ने, कहिण लगे शब्द मरो, गुरु दे शब्द दी राही अपने आपे नूं मार लो, अपनी हउमे नूं मार लो, अपने विकारां नूं मार लो, तां की होएगा? फिर जीव उह सद ही फिर हमेशा ही आत्मक जीवन जीउंदे रहो, कदे आत्मक मौत नहीं होएगी। मनुख अत दा निराश फिर कदे नहीं हुंदा, क्योंकि वह परमात्मा दे भाणे विच तुरदा है। वह सब कुछ इहनू कहिंदे भी इह जो भी कुछ इस संसार विच हो रहा है वह परमात्मा दी मर्जी मुताबक हो रहा है। सतगुरु जी कह रहे हैं।

आपने पूर्ण कृपा सबका पूर्ण अपनी आत्मा से कृपा कर आत्म है सगल वस्ता है जाका सत्य कहाओ कि तुम सत्य मान कर देना ठाकुर गाई है आत्म करनी पाव नाम प्याव सहज स्वभाव अपने मन करके जरा उस प्रभु कृष्ण का गायन करता है वो अवश्य आत्मा बलवान योद्धा बन जाता है। सहज सत्य पावन कुरबानी जिन हारे ऐसो कौन बलि ऐसा कोई योद्धा है जिन्हें इतना मंजा मार दिता हो जित प्राप्त कर ली सो ओ योद्धा केवल वो आओ गुरु को उस बालक के नाम का रंग उस बालक के नाम का प्यार वास्ते उदास करिए कोशिश करिए करिए असी

वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र वाहिद्र।

अमृत सार बिथे बिथ थाई माया मोह परम पैपूले सुत दारा सो प्रीत लजाई एत उत्तम पांत सुन्यों।

ईत ऊत नहीं बिछड़े सुसंगी गनिया बिन सजाई जो निमख में सु अल्प सुख पनिया रहाओ प्रतपाले अपियाओ दे कश ऊन ना हुई सास सास संभालता मेरा प्रभ सुई अचल

गुरु गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु नाल आपां लीन हो जाइए।

0: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो
1: कल कलेश तन मह मिटावो
0: सिमरो जास मसमरेक
1: नाम जपत अगनक अनेक
0: वेद प्राण सिमर।